उसमें सुभाष जैसो त्रिपत ना मत पको उदत आकाश आस कदे ना बिहंग की कटाकन कोर मोर चातर कर दे उलास नाद बाद सुन रतन कटे ना को रंग की तैसे प्रेम रस रस रसाल।

बछरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन मैं सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल।

पई सबहन आन बधाई दई। धन्य धन्य लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा।

रहे चित की इच्छा, तव चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो, आप हाथ दै मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभै कर तारा। मोर अच्छा निज कर दै करिय, सब बैरन कौ आज संघरी।

हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सगल प्रजा जिने आप सवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रण को पलमो भद कियो, घट

तहें सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दिष्ट तन जाहें निहारे हो, ताके ताप तनक मैं हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट छा छै सकें न को।

पर जग माता ग्रंथ करा पूरण शुभ राता किल बिक सकल दे को हरता दुष्ट दोखियन को छय करता श्री अस्तु जब पहे दयाला पूरण करा ग्रंथ तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुनै गुंग जोइया है सुरस न पावई सुनै मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट न तिन नर के रह हो जो या की एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत सत्रह सहस पणिज अर्ध सहस पुण तीन कहिज भाद्रो सुदी अष्टमी रववारा तीर स्तुद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पूप संवादे 405 चरित्र समापत मस्त सब मस्त अपजू दोहरा दास जान कर दास पर

सै प्रीतम बनाओ किसन बिसन कब हूँ न त्याओ कान सुने पहचान न तिन सो लिवलागी मोरी पग इन सो महाकाल रख।

अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देग तेग जग में दो चले राख आप मोहे और ना दले तुम मम करो सदा प

तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। दास जान कर कृपा करो मोहे, हार परा मैं आन द्वार तोहे। अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहेब मैं किंकर तारा। दास जान दे हाथ उबारो, हमरे सब बैरियन संघारो। प्रथम तरो भगवत को ध्याना, भौर करो कविता विधनाना। कृष्ण जथा मचरित्र उचारो, चूक होए कब लेहो सुधारो। कब्यो बाच दोहरा, जो निज प्रभ मो सो कहा। सो कहो जग मा है, जो ते प्रभ को त्याए है। अंत सुर को जा है दोहरा, हर हर जन दुई एक है। बेबिचार कछ ना है, जल ते उपज तरंग ज्यों। जल ही बिखै समा है दोहरा, जब आयस प्रभ को पायो। जन्म तरा जग आए, अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए। कबे बाच दोहरा, ठाड पयो मैं जोर कर। बचन कहा सिर न्याए, पंथ चले तब जगत में। जब तुम करो सहाय दोहरा, जे जे तुमरे ध्यान को। नित उठते हैं संत, अंत लहेंगे मुक्त फल। पावेंगे भगवंत दोहरा, काल पुरख की देमो। कोटक विष्ण महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते। रवसस क्रोर जलेश दोहरा, राम कथा जुग जुग अटल। सब कोई पाखत नेत, सुर्ग बास रघुवर करा। सगरी पुरी समेत चौपई, जो ए कथा सुने अर गावे। दुख पाप तेह निकट न आवे, विष्णु भगत की ए फल होई। आद व्याद छह सकै न कोई, सम्मत सत्रह सैस पचावन। हाड़ बदी प्रथम सुख दामन, तो प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा। पूल परी लोह लेहो सुधारा दोहरा, नेतर तू के चरण तर। स्तुद्र तीर तरंग, श्री भगवत पूरण कियो। रघुबर कथा प्रसंग, साध असाध जानो नहीं। बाद सुबाद विवाद, ग्रंथ सकल पूरण कियो। भगवत

साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बिदारियन ते साहिब की टेक नानक मनै माह जिस सिमर।

दुख सब विसारना, अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सोवारना, सबना गल्लां समरत स्वामी सो क्यों मन हो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं कर तेरा, करता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सचे साहिब क्या नाहीं कर तेरा, साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटहो, जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संत हो सबद तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच सबद तित कर सुभागा, कर सुभागा सबद वाजे कला जित करत हरिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे, कह नानक तह सुखोआ तित करन हद वाजे, आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुर ते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया भरपूर, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर, सुनते पुनीत कहते पवित।

थोड़ी साहिब हुई दयाल कृपा करिता साईकार कराए सी। सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म मनाए सी, हुक्म मनया होवे प्रवान तक खसमे का मिल पाए सी, खसमे पावे सो करे मनोज।

पौड़ी चाकर लग गए चाकरी जे तले अक्स में पहाए और मत तिसनु अगली वजह पे दुना खाए कसमें करे बराबरी।

बसंत की वार महल पंजवा को ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम जय है हो रहा बाई करम कंत पाई है और सुहाग बाण त्रण त्रिपवन मौल्या अमृत फल पाए।

सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तराए। अनक माया रंग देखना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै। जे मार्ग इहो जात अकेला, उलता है हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नामन सदा त्याईया, नानक गुरमुख परमगत पाईया। छूटत नहीं कोट लकबाही, नाम जपत तह पार पराही। अनक बिघन जह आय संघारै, हर का नाम तत्काल उदारै। अनक जौन जन्मै मर जामो, नाम जपत पावै विश्राम। हो मैला मलकम न धोवै, हर का नाम कोट पाप खोवै। ऐसा नाम जप मन रंग, नानक पाइया साधका संग। जिह मार के गिन जाहे न कोसा, हर का नाम ऊहा संतोसा। जह पैंडा महा अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा।

आप अलिप्तलया भरपूर। कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक स्वर्ग निवासी, कई कोट जन मह जीव मरह, कई कोट जोनी प्राए, कई कोट बैठती खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट किए तन हंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जय पण तह तहरा के नानक सब गुर बाप गए हाथे। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तृण विलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म पार बन लहनते, कई कोट दर्शन प्रप्यासु, तिनको मिलियो प्रभ अविनाशु, कई कोट मांग सत्संग, पार ब्रम तृण लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अर खंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई कोट होए अवतार, कई युक्त कीनो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने बपात, प्राप्त हुए परमा समात, ताका अंत न जाने कोए, आपे आप नान प्रभ सोए, कई कोट बार ब्रह्म के दास, तिन होवत आत्म प्रगास, कई कोट तात के बीते, सदा निहार है एको नितले, कई कोट नाम रस पीबा है, अमर पय सत सद ही जीवा है, कई कोट नाम गुण गावे, आत्म रब सुख सह समावे, अपने जन को साथ साथ समारे, नानक ओए परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोई, नानक तिस बलिहार नहीं, जल थल महील सोए अष्टपदी, करण करावन करना जोग, जोत पावे सोई होग, खिन मह थाप थाप नुहारा, अंत नहीं किच पारा वारा, हुक्मे धर धर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनकरंग प्रकार, कर कर देख अपनी वडियाई, नानक सम रह समाई, प्रभावै मानुख गत पावै, प्रभावै ता पार्थ त्रावै, प्रभावै मन साथ राखै, प्रभावै ता हर गुण भाखै, प्रभावै ता पत तु धारै, आप करै अपन बिचारै, दोहा सिरिया का आप स्वामी, के लै बिकसै अंतरजामी, जो पावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवन आवै, कहो मानुख ते क्या हुए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ हुए ता सब चले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत वेखिया मैं है रचाई, जे जानत अपने आप बचाई, भरमे भूला दह दिस्तावै, निमक माय चार गुण फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक दे जन मले, खिन मह नीच गीट को राज पार, ब्रह्म गरीब निवासो, जाका दृष्ट कछु न आवै, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावै, जाको अपनी कराई बख्शीसो, ताका लेखा नगर जगदीश है, जियो पिंड सब तस्की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनतिया बनाई, नानक जी वै देख बढ़ाई, इसका बालना ही इस हाथ, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योत पावै सोई पुण थियो, कबू ऊंच नीच में बसाए, कबू सोग हरख रंग हसाए,

कबू महा क्रोध विकराल, कबू सर्व की होत न बालो, कबू होए बह बड़ राजा, कबू पे कारी नीच का साजा, कबू अब कीर्त मह आवै, कबू भला भला कहावै, जो प्रभु रखै तबिही रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै।

अष्टपदी जिसके अंतर राज मानो सोनक पाति हो स्वानो जो जन इंज में जो बनवंत सो हो विस्ता का जंतु आप सो कर मंत कहा वह जन मरा भोजन परमा वह धन भूमिका जो करा गमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बिसावै नानक इह मुक्त आज्ञा सुख पावै धर्मंता होय कर गर्भावै तृण समान काछ संग न जावै।